0: थोड़ा हंसना थोड़ी जी कूरी वटना। शमी भाई जी
1: जी,
0: थोड़ा हंसना थोड़ी जी कूरी वटना।

0: वाह
1: लास्ट रह गई लाइन बाबियो
0: जी,
1: तमाम मैं थोड़ा ही लेना चाहता ज्यादा लै गया कोई गल नहीं चलो
2: बहुत बहुत खूब
1: देख के।

खुश रहे जो सदा उसकी मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास

अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए। चरखड़िया ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा है, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है, मखमल छड़ के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा है।

ने बड़े यत्न से तेरी महिमा में कुछ नगमे सुने, तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं, लिखे जो मन ने। ये हरियाली भरी वादी, ये फूलों से लदी।

लुक लुक के सौदे करना है, लुक लुक के सौदे करना है, बिन मेहनत बोझे पर्दा है। लुक लुक के सौदे करना है, बिन मेहनत बोझे भरना है। साधन चोर बनावे तू ना अल्लाह कोलों डरदा है।

अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए। चरखड़िया ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है। मखमल छड के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा है।